0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सन्चे सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sound check. Studio time. The studio time.
4: It's 7 a.m. बिहानको 7 बजे.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगर पालिका 5 सोलु कुंभू

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड को मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उखड़ा को मिलन चुकिया
1: हुंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रवृत्ति उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ रो
2: अफ रोड का उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया दर्शन बजार में लंच भैर
2: सब उम्र समूह कर्मचारी तथा व्यवसाय प्रयोजन का लगी अति उपयोगी
1: हमारा सेवा
2: ओखलढुंगा खोटांग दिक्तल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जिनसुक मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट सर्विस सेवा निःशुल्क दीने
1: ऑनलाइन बुकिंग करे भुगतान करे में होम डिलीवरी को सुविधा समेत रहने
2: ओखलढुंगा को आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजाई ओखलढुंगा
1: संपर्क नंबर 037590222 9852880022 और 9842880300

0: प्रोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: It's 8 a.m.
3: Time check को साथ में New Star Digital Color Lab तथा Dwaramai Offset Press सोलु दुतुन नगर पालिका 5 सोलु कुंभ

0: एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुर्गुम्बा नगरपालिका 5 सोलु कुम्बु

0: পারা গোয়েরো ফ্রান্স, আমেরিকার বেলজিয়াম, পর্তুগাল স্পেন, ব্রাজিল নরওয়ে, মেক্সিকোর ইংল্যান্ড, আর্জেন্টিনার ইজিপ্ট তথা সুইজারল্যান্ড ও কলম্বিয়া লিখে নিয়ে আসছেন। প্রি কোয়ার্টার ফাইনালকো পহলো খেলমা আজ রাতে নেপাল সঙ্গে অনুসার পৌনে এগারো বাজে সহ আয়োজক ক্যানাডা ও মোরক্কো তথা ভোলি বিহান পৌনে তিন বাজে পারা গোয়েরো ফ্রান্স বীচ খেল হুনেছ। ত্যস্তই ব্রাজিল ও নরওয়ে বীচ আইতবার মধ্য রাতে পৌনে দুই বাজে খেল হুনেছ। সোমবার বিহান পৌনে ছ বাজে মেক্সিকো ও ইংল্যান্ড লিখে নিয়েছেন। সোমবার মধ্যরাতে পৌনে এক বাজে পর্তুগাল ও স্পেন লিগ খেলবা। মঙ্গলবার বিভিন্ন পৌনে ছ বাজে আয়োজক আমেরিকা ও বেলজিয়াম বীচ খেল হুনেছ। ত্যস্তই মঙ্গলবার রাতকো পৌনে দশ বাজে আর্জেন্টিনা ও ইজিপ্ট তথা মধ্যরাতে পৌনে দুই বাজে সুইজারল্যান্ড ও কলম্বিয়া লিগ খেলনে ভয়েকা ছ। उज्यालो रेडियो मेघपुर काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जबाट प्रसारण भइरहेको दिउँसो 12 बजेको नेपाल खबर सकमा अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। राजधानी सेवा असार 24 देखि केही दिन बन्द हुने, असार 29 देखि नयाँ प्रणालीबाट सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी। कर्णालीमा हराइरहेको मिनी बस र यात्री खोज्न सोमार क्यामेरा र म्यागनेट सहितको टोली पुग्यो। आज काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका 16 जिल्लामा बाढ़ीको जोखिम। नारायणगढ बुटवल सड़क पूर्वी खण्डमा कालो पत्री र ढलान सम्पन्न, अब सड़क सुरक्षा अन्तर्गतका कामहरू मात्रै बाँकी। नेटो सदस्य देश र क्यानाडाबाट युक्रेनलाई व्यापक सहयोगको प्रतिबद्धता। अर्को हप्ता टर्किएको अन्दरामा गठबन्धनको शिखर सम्मेलन हुने। तर विश्वकप फुटबलको प्री क्वार्टर फाइनल समीकरण पूरा, पहिलो खेलमा आज राति सहायोजक क्यानाडा र मोरक्कोले खेल्दै। दिउँसो 12 बजेको नेपाल खबर सकियो, दिउँसो 3 बजे नेपाल खबर लिएर फेरि हामीसँग। उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, उज्यालो अनलाइन .com पढ्दै र सुन्दै गर्नुहोला। बाढ़ीको सम्भावित क्षेत्रमा आवश्यक सतर्कता अप्नाउनुहोला। नमस्कार।
1: शिक्षण पेसामा आफ्नो भविष्य बनाउन सक्नुहुन्छ? बाल बालिकाको भविष्य उज्जवल बनाउँदै समाज सेवा गर्ने एउटा सुयोग अवसर। सोलु खुम्बु जिल्लाको सोलु दुपुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर 10 टापिङ च्याङका स्थित ओम्छु आधारभूतमा भूमि विद्यालयका लागि एकजना दक्ष अंग्रेजी शिक्षकको आवश्यक परेको हुँदा यसै सूचना मार्फत सम्पूर्णमा जानकारी गराइन्छ। सेवा सुविधाहरू भने बस्नेको सुविधा विद्यालयद्वारा नै उपलब्ध गराइनेछ, तर आपूर्ति पुरस्कारमा प्रदान गरिनेछ। पद अंग्रेजी शिक्षक एकजना, आवश्यक न्यूनतम योग्यता कक्षा 12 उत्तीर्ण वास्तु भूमा माथि थप सामान्य कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान भएको हुनुपर्नेछ। आवश्यक कागजातहरू नागरिकताको प्रतिलिपि फोटोकपी र शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्र। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बरहरू 1 3 6 विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष 98 6 61 44 74 र 3 6 वस्तु सञ्चालक 98 41 15 90 82 नगरपालिका वडा नम्बर 10 7 0।

0: सुनो तो बात बस आज हम के विषय में छलफल गर्छौं
1: वैदेशिक रोजगारी को विषय में गुरुआमा
0: वैदेशिक रोजगारी में जानू हो कि ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन् आलो पालो भने त
2: सिप सिकेर तथा काम को बारे में राम्ररी बुझेर मात्र वैदेशिक रोजगारी में जानु पर्छ गुरुआमा
0: हो अरु भने त
3: वैदेशिक रोजगारी में जानू अघि घर परिवार सँग राम्रोसँग सरसल्लाह गर्नुपर्छ
4: वैधानिक रूप में प्रमाण पत्र र कागजात बनाएर मात्र वैदेशिक रोजगारी में जानु पर्छ गुरुआमा
0: श्याबास अति राम्रो र व्यवहारिक सुझावहरू राख्यौ अरुको पनि केही छ कि वैदेशिक रोजगारी में जाँदा सम्बन्धित देश को नियम कानून का बारे में जानकारी राख्नु पर्छ सुरक्षित वैदेशिक रोजगार का लागि श्रम स्वीकृति लिएर मात्र जानु पर्छ कामदार भिसा बाहेक भिजिट वा अन्य भिसा में वैदेशिक रोजगारी में जानु हुँदैन गुरुआमा
4: सुरक्षित वैदेशिक रोजगार का लागि नेपालको विमानस्थल नै प्रयोग गर्नुपर्छ
0: वैदेशिक रोजगारी में जाँदा अपनाउन पर्ने सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी सरसले र साथीभाइहरूलाई पनि बताउनुपर्छ
5: नेपाल सरकार विज्ञान

0: मनु एफएम 101.2 मेगाहर्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: डिजिटल
2: कलर लैब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलु दुर्कुम नगर पालिका 5 सोलु कुम्बु।

0: Raio Rádio, todo é certo. FM 101.2 MHz. Usual Bhavishya ko lagi hamro abhiyan.
1: Soundcheck. Suru FM. The studio time.
2: It's 5 PM.
0: चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुर्कुंड नगर पालिका 5 सोलू कुंडू

0: 甲子園人生を参考にしてください。
1: Suchana, Suchana, Suchana. Student University Journey Sort of Nirman Kadia, High School in Chukrabata, Sun Sun and Hindu Kosha, Nirman Kadia Kakrama, Matulu Sulimata, Bunga Kosti, Sun Havana, Rajali, Tolma Sira Sadam Chukrama, Nasta Kosna, Guy Bosti Chorana Kota, Avatar Dani, Puna Istani Basti Kota, Sarva Sadar and Hulai, Savadhani of Nana Huna, Sushana, Matta Konro, Berinsha, Kupaya. जोखिम मुक्त क्षेत्र में खाना आवश्यक रूप में नौजानु होश व आशा बाल बालिका तथा चौपाई अलग समय तक सुरक्षित रखी गये सिविल जिल देश की उपभोक्ता समिति स्कूल खुलो बाट बचन र बचाओ यौनी हिंसा सामाजिक अपराध हो। बाल बालिका यौनी हिंसा को जोखिममा हुन सक्छन्। हिंसा समिति असन्तोष साथीलाई परिचित नदीबाट जोखिमबाट हुन सक्छ। अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको व्यवहार ख्याल राखौ। बाल बालिकाको चालचलन पानी बेहोरा अतिभावी परिवर्तन आएको हुन सक्छ। त्यस्तो पाइने उनीहरूसँग तत्काल कुरा गरौ। बाल बालिकासँग नियमित सम्वाद गरौ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में

0: アクティリカディディ、ユマイズルブナウコストゥトナコフォンディスルミ、ビジュサマンキマボジャータチャーチャータポセチャーレ、タテイパウ。オフ、アブサマンディナ、タファノリザンフォンディキャウ、ダッドハン、ティープルトストゥサマンナシュウ、ビシュリコサマンナ、カフォンディキナザンウ、アンディシュリコマ、ショップトゥパンシャドウ。ए वोरा दीदी क्या पाएं था मत खुशदा खुशदा था कि सके हो नसुनी बने सुनी दुपहुंगा नगर पालिका उड़ानों पास में उन्हें को शांति स्टोर एंड सप्लाई में कहे दूसरी का संपूर्ण नया सावन मेरे होल्ड तथा खुदरा मूल्य में पाएं था बोर्ड आधुनिक स्मिथ वाइडिंग का सामान जी खुशी ते ही तैयार लो नए सामान पने पाने पुराने सामान पने मरमत होने ये तो ढूंढना खुशदा बेटा मेरे दस्ते भाई दीदी हजुर बिजुली को भरपर्दो सह यात्री शांति स्टोर एंड सप्लाइज सोनू दुपकुंडा नगर पालिका वड़ा नंबर 5 सल्लेरी सोनू खुंडू यहाँ बिजुली का संपूर्ण सामान होलसेल तथा खुदरा मूल्य में पाने का साथ है नया तथा पुराना सामान मरमत पनि गरिन्छ थप जानकारी का लागि संपर्क नंबर गुरु कुल नारायण श्रेष्ठ 9763007784 दिव्य श्रेष्ठ 9862682000 सुनो दुपकुंडा नगर पालिका पास चलिरहे सुनो सड़क प्रायः गंदा ध्यान दो सड़क सीमा अतिक्रमण न करो सड़क सीमा में अस्थायी एवं स्थायी समय सीमा निर्माण न करो सड़क को नाली थल तथा पानी निकास बंद होना न दो सवारी चलाउँदा लेन अनुसार पालना करो र गराउ सवारी चलाउँदा ट्राफिक नियम को पालना करो सवारी साधनमा झुन्डिएर वा छतमा बसेर यात्रा नगरौं सड़कको क्षमता भन्दा बढी भाग प्रयोग नगरौं जेब्रा क्रसिङबाट मात्र बाटो काट्न गरौं सड़कको तत्काल मर्मतमार गर्ने गरौं यात्राको क्रममा कुनै समस्या भए नजिकको प्रहरीलाई खबर गरौं
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश